एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ्स गुड।

0: सुनिए ना, आइए हम लोग अनिमा 10 बजे तक था।
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ी को 5 गते कुना को लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ।

हाँ जाने हो युमाया कहाँ सम्मा बामरा फूलते रहियो फूले को चली रबाशना है ये सुमधुर खाल को भागा संगे बिना स्वागत कर दिसो मेरे सही सुमधुर खाल का भागा संगे हम आज के सुंदर व्यवसाय बिहारी के व्यवसाय को शुभारंभ मादे लोग घरे आज के व्यवसाय में नए तथा पुराना लोगित भागा हर रहने इसमें रेडी वाला प्रोग्राम में हमें और कुछ पुराना तीस लोगित भागा जोड़ सो सही भागा संगे हमें छोटे व्यापारिक विश्राम दर पलाद नहीं सो निश्चित पश्चिम हवा स्वस्थ बने नहीं सो यहाँ घने हम इस संगे रहने भुला।

0: सुमित
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।